0: श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्
1: सो भार्गव वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड टू द एंड ऑफ द शिवोपासना मंत्रम अ ब्यूटिफुल जर्नी विच वी हैव बीन ट्रेडिंग अलोंग ऑलमोस्ट मोर देन सिक्स मंथ्स
2: या नियरली सिक्स मंथ्स
1: आई थिंक वी शैल एक्चुअली गो थ्रू द लास्ट फ्यू stanzas that are verses from this mantra and then we'll start going into detail of these meanings
2: yeah

0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: बिकॉज ऑफ आर फिजिकल बॉडी दिस वेस्चर दैट वी पुट ऑन वी कंसिडर आर सेल्व्स टू बी ह्यूमन बट इट इज नॉट द बॉडी दैट मेक्स अस ह्यूमन फॉरगेट दिस बॉडी कॉन्शियसनेस एंड नो द ट्रूथ थिंक ऑफ गॉड हु इज द इटर्नल ट्रूथ Don't spend your whole lifetime thinking of the physical. God is the embodiment of love. Everything is love, nothing but love. Love has no form. You cannot put a limit to it. The ocean has limits, the sky has limits, but love has no limits.

0: भरत भरत सो वार्डन सर आस्क्ड मी टू टेल यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड टू डिलीवर द मेन इंडिपेंडेंस डे स्पीच टुमारो
1: मी आर यू श्योर विवेक
0: एब्सोल्युटली श्योर
1: बट देर आर अदर ब्रदर्स हु स्पीक बेटर देन आई डू
0: यू नो व्हाट द प्रोफेसर से दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस सो डोंट वरी आई विल कैच यू अप लेटर सराम
1: सराम
2: Congratulations, Bharat. It's a good opportunity for you.
1: Thank you.
3: Congratulations, Bharat.
1: Thank you, Hari. By the way, do you have any tips for me?
3: Just don't give the same old textbook speech. Say something that impacts everyone. Speak from the heart, Bharat. Speak from the heart. Anyways, I gotta go. Sai Ram.
1: Sai Ram. How do I capture the soul of a nation in 5 minutes? What can I say about freedom that hasn't been repeated 1,000 times? There was a poem of Rabindranath Tagore that always inspired me. It must be in the rack somewhere.